0: Sound your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's EDM.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City
6: FM 89. Trending today.
7: Hollywood superstar Clint Eastwood has retired, according to his son. When Clint Eastwood's Juror No. 2 came out in 2024, it felt like the end of an era for the kinds of movies Eastwood made over the course of his decades-long career, and it appears that the film may be his last. In a newly surfaced interview from November 2025 with the French publication France Info, his son Kyle Eastwood revealed that his father has retired from film work.
8: तुम कभी ना झुकी मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
9: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
10: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
11: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाएं फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
12: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
13: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी, आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया।
14: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM
1: 89.
4: Ek, do, teen, yellow. Ek, do, teen, yellow.
5: Ye kya hai bhai?
6: Ek, jacket, shoes ho ya watch. Jo chahe select karo. Do, Jazz Cash par yellow se payment karo. Aur teen, yellow se apni payment ko 3 installments mein break karo. To kya samjhi?
1: Jo chahe khareedo, paise aaram se de do. Yellow by Jazz Cash.
6: Abhi Jazz Cash app download karo. Aur yellow ke through payment karo.
7: यार सीरियसली बाटा पे 50% तक डिस्काउंट.
8: हाँ भाई 50%, कैन यू बिलीव इट.
7: तो फिर लेट्स गो टू बाटा स्टोर्स.
9: फॉर ऑनलाइन विजिट www.bata.com.pk.
10: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से. तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: You're listening to City FM 89.
6: तुम कभी ना झुकी मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया. तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है. हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया.
7: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive, and chronic disease.
8: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 a.m.
3: City FM 89.
4: यार सीरियसली बाटा पे 50% तक डिस्काउंट.
5: हाँ भाई 50%, कैन यू बिलीव इट.
4: तो फिर लेट्स गो टू बाटा स्टोर्स.
6: फॉर ऑनलाइन विजिट www.bata.com.pk.
7: इन इंटेंस हीट सिटीजन्स आर एडवाइज्ड टू टेक स्पेशल प्रिकॉशनरी मेजर्स बिटवीन 11 AM एंड 4 PM. अवॉइड गोइंग आउटडोर्स अननेसेसरली. वेयर लाइट क्लोथिंग. Keep your head covered. Avoid strenuous physical activity in direct sunlight. And take special care of children, the elderly, and sick individuals. Drink plenty of water and stay safe. This public awareness message is presented in collaboration with Government of Sindh, PDMA, Commissioner Karachi, K-Electric, and Selani Welfare Trust.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: City FM 89, we're playing your song.
5: Everybody go.
6: You're listening to
7: Non-Stop Hits.
8: No talk.
9: Just you
8: and the music.
9: Back to back
8: starts now.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: When I grow up, I want to be strong.
5: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
4: I want to learn big things.
5: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A and zinc, affecting how they grow, think and learn.
4: I want to be the fastest.
5: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
4: I want to grow up like everyone else.
5: Because every child deserves a chance to grow, learn and thrive. Act now for the foundations of our nation.
6: Nurture today, strengthen tomorrow.
5: Act, a Dawn Media Initiative.
7: City
8: 89.
9: We're playing your song.
5: You're listening to
10: Non-Stop Hits.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This time check is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Trending today.
5: Hollywood superstar Clint Eastwood has retired, according to his son. When Clint Eastwood's Juro No. 2 came out in 2024, it felt like the end of an era for the kinds of movies Eastwood made over the course of his decades-long career, and it appears that the film may be his last. In a newly surfaced interview from November 2025 with the French publication France Info, his son Kyle Eastwood revealed that his father has retired from film work.
1: City FM 89.
6: 1, 2, 3, yellow. 1, 2, 3, yellow.
7: ये क्या है भाई?
6: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैज कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
1: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैज कैश।
6: अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
8: यार सीरियसली बाटा पे 50% तक डिस्काउंट?
9: हाँ भाई 50%, कैन यू बिलीव इट?
8: तो फिर लेट्स गो टू बाटा स्टोर्स।
10: फॉर ऑनलाइन विजिट www.bata.com.pk।
11: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
12: इन इंटेंस हीट सिटीजंस आर एडवाइज्ड टू टेक स्पेशल प्रिकॉशनरी मेजर्स बिटवीन 11 AM एंड 4 PM। अवॉइड गोइंग आउटडोर्स अननेसेसरीली। Wear light clothing. Keep your head covered. Avoid strenuous physical activity in direct sunlight. And take special care of children, the elderly, and sick individuals. Drink plenty of water and stay safe. This public awareness message is presented in collaboration with Government of Sindh, PDMA, Commissioner Karachi, K Electric, and Selani Welfare Trust.
4: You're listening to City FM 89.
13: We're playing your song.
1: You're listening to
3: Non-Stop Hits.
14: No talk. No talk. No talk. No talk. No talk. Just you and the music.
15: Back to back starts now.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: यार सीरियसली, बाटा पे 50% तक डिस्काउंट?
4: हाँ भाई, 50%, कैन यू बिलीव इट?
3: तो फिर लेट्स गो टू बाटा।

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 4 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Hollywood superstar Clint Eastwood has retired, according to his son. When Clint Eastwood's Juror No. 2 came out in 2024, it felt like the end of an era for the kinds of movies Eastwood made over the course of his decades-long career, and it appears that the film may be his last. In a newly surfaced interview from November 2025 with the French publication France Info, his son Kyle Eastwood revealed that his father has retired from film work.
7: तुम कभी ना झुकी मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया
8: Obesity आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है इसमें आपकी कोई गलती नहीं
9: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
10: Yaar, seriously? Butter pe 50% tak discount?
11: Haan bhai, 50%. Can you believe it?
10: Toh phir, let's go to Bata stores.
12: For online visit, www.bata.com.pk.
13: In intense heat, citizens are advised to take special precautionary measures between 11 a.m. and 4 p.m. Avoid going outdoors unnecessarily. Wear light clothing. Keep your head covered. Avoid strenuous physical activity in direct sunlight. And take special care of children, the elderly, and sick individuals. Drink plenty of water and stay safe. This public awareness message is presented in collaboration with Government of Sindh, PDMA, Commissioner Karachi, K Electric, and Selani Welfare Trust.
1: City 89.
14: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें जैस सार्फिन के लिए *275 हैश जोंग सार्फिन के लिए *4004 हैश यूफोन सार्फिन के लिए *6611 हैश और टेलीनोर सार्फिन के लिए *342 हैश अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें डिजिटल दुनिया में महफूज कदम कीजिए
15: City FM 89 We're playing your song
1: You're listening to
16: Non-stop hits.
17: No talk. Just you and the music. Back to back starts now.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: इन इंटेंस हीट, citizens are advised to take special precautionary measures between 11 a.m. and 4 p.m. Avoid going outdoors unnecessarily. Wear light clothing. Keep your head covered. Avoid strenuous physical activity in direct sunlight. And take special care of children, the elderly, and sick individuals. Drink plenty of water and stay safe. This public awareness message is presented in collaboration with Government of Sindh, PDMA, Commissioner Karachi, K Electric, and Selani Welfare Trust.
5: Sunlight exposure within 30 minutes of waking helps to regulate your sleep-wake cycle.
6: Brought to you by Dettol.
7: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
8: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
9: A new era begins.
10: City 89.
11: We're playing your song.
10: You're listening to
12: Non-Stop Hits.

0: This show is brought to you by Jazz
1: City FM 89.
2: Dulux दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी. आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया.
3: Avail up to 50% off at the Diners mid-season sale. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply. Exam.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
5: Trending today.
6: Hollywood superstar Clint Eastwood has retired, according to his son. When Clint Eastwood's Juror No. 2 came out in 2024, it felt like the end of an era for the kinds of movies Eastwood made over the course of his decades-long career, and it appears that the film may be his last. In a newly surfaced interview from November 2025 with the French publication France Info, his son Kyle Eastwood revealed that his father has retired from film work.
7: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
8: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
9: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
10: ये क्या है भाई?
11: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैज कैश पर येलो से पेमेंट करो, और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
12: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैज कैश।
11: अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 PM.
3: You're listening to City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: Ek duni do do duni chaar sahi intikhab ke inamat 2,500.
7: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
8: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन टीएनसीस को तस्लीम करना है।

0: Pakistan together today, ready for tomorrow.
1: Avail up to 50% off at the Diners mid-season sale. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: यार सीरियसली बाटा पे 50% तक डिस्काउंट.
3: हाँ भाई 50%. कैन यू बिलीव इट.
2: तो फिर लेट्स गो टू बाटा स्टोर्स.
4: फॉर ऑनलाइन विजिट www.bata.com.pk.
5: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
1: City 89.
5: Trending today.
6: Hollywood superstar Clint Eastwood has retired, according to his son. When Clint Eastwood's Juror No. 2 came out in 2024, it felt like the end of an era for the kinds of movies Eastwood made over the course of his decades-long career, and it appears that the film may be his last. In a newly surfaced interview from November 2025 with the French publication France Info, his son Kyle Eastwood revealed that his father has retired from film work.
7: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
8: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
9: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
10: ये क्या है भाई?
9: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
11: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
9: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 PM.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
6: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
7: Avail up to 50% off at the Diners mid-season sale. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
8: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
9: यार सीरियसली बाटा पे 50% तक डिस्काउंट।
10: हाँ भाई 50%, कैन यू बिलीव इट?
9: तो फिर लेट्स गो टू बाटा स्टोर्स।
11: फॉर ऑनलाइन विजिट www.bata.com.pk।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: City FM 89, we're playing your song.
4: You're listening to
5: The Rush Hour with ABD.

0: DFM 89. It's 8 p.m.
1: This time check is brought to you by Jazz.
2: You're listening to City FM 89.
1: This show was brought to you by Jazz.
0: City FM 89.
3: Coming up next.
4: Future Sounds.
1: City FM
4: 89.
5: Trending today.
6: Hollywood superstar Clint Eastwood has retired, according to his son. When Clint Eastwood's Juror No. 2 came out in 2024, it felt like the end of an era for the kinds of movies Eastwood made over the course of his decades-long career, and it appears that the film may be his last. In a newly surfaced interview from November 2025 with the French publication France Info, his son Kyle Eastwood revealed that his father has retired from film work.
7: एक दो तीन येलो एक दो तीन येलो
8: ये क्या है भाई
7: एक जैकेट शूज हो या वॉच जो चाहे सेलेक्ट करो दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो तो क्या समझी
9: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो येलो बाय जैस कैश
7: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो
10: Avail up to 50% off at the Diners mid-season sale. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
11: अब तमाम सरकारी दारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी जैसे FPR टैक्स ट्रैफिक चालान पासपोर्ट फी गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी घर बैठे जैस कैश से तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया क्योंकि तमाम सरकारी दारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना
12: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
4: We are
1: City FM 89.
4: Future Songs.
13: Vibe with us, your music.
14: Discovery for the latest jams and hidden gems.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
4: City 89. You're listening to
5: Future Sounds.
6: Future Sounds.
7: New tunes, hot beats, where your next favorite track finds you.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: Ek, do, teen, yellow. Ek, do, teen, yellow.
3: Ye kya hai, bhai?
2: Ek, jacket, shoes ho ya watch. Jo chahe select karo. Do, Jazz Cash par yellow se payment karo. Aur teen, yellow se apni payment ko 3 installments mein break karo. To kya samjhi?
4: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. ये लो बाय जैस कैश.
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। Life Boy Anti Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg. 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
4: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
5: A new era begins.
6: City FM 89.
7: You're listening to
8: Non-stop hits.

0: ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: Attention, the standard commute has been decommissioned.
4: Introducing a system override for your ears.
5: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
6: Join ABD as he takes over the streets.
5: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
4: your evenings just got an upgrade.
6: The rush hour with ABD.
5: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
4: Tune in or get left behind.
7: City of M89, we're playing your song.
8: You're listening to
9: Non-Stop Hits.